श्रोता मित्रों, लोगों पर तीन एहसान कीजिए। फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान भी ना करें, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। आ पंक्तिओ कही जाए छे कि जीवन में आपणे कोई ने कशु आपी न शकीए तो छीनवानो प्रयास शा माटे करवो जोईए। बस आम चालता चालता, बैठा बैठा, विचारता विचारता कई ज करवा माटे नथी तो कोईक ने हैरान ने परेशान शा माटे करवो जोईए। जीवन छे जीववा माटे, सुख ने साहिबी मेळवी छे तो कोईना सुख ने साहिबी तो न छीनवा जोईए। आ सुंदर विचार ने जीवन में चौक्कसथी उतारो। मस्त रहो, व्यस्त रहो ने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज़।

क्रोध वियुक्त काम, काम एटले कामनाओ समझवानी, बधी इच्छाओना माटे काम शब्द छे। साधारण रीते गुजराती में जे काम शब्द वपराय छे एटला अर्थमां नथी, बधी ज कामनाओ बधी ज इच्छाओ एने आपणे काम कहीशुं, न फळे एटले क्रोध थाय। काम क्रोध वियुक्ता नाम कहे छे त्यारे काम क्रोध विगेरे एम आपणे उमेरी लेवानुं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
0: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं।
2: जी,
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था, इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
2: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
2: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे

0: से अधिक है। श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।

प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत

0: जा रहा कौआ अपनी रोटी गवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओ अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई।

0: उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला
2: हाँ?
1: देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना,
2: हाँ हाँ,
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ।
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक है।
0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: ठीक है।
1: चल चल चल चल, चल। हम हाँ, दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
2: हाँ, ठीक है।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
4: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
5: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए। फिर क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए।
1: अच्छा किया जो आप आए।
0: आपका स्वागत है। आपके यहाँ सब कुशल क्षेम तो है?
2: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
2: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
2: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
2: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
3: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
4: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
5: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
5: जी।
3: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के

0: चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेंसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेंसन, जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
2: नहीं नहीं,

0: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
1: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
0: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: फंस गई,
1: धीरे धीरे हाले हाले फंस गई।
2: है जिया हमरा घरवा ना तेरे आज मैं ना फंस गई।

अक्का पालनपुरी नी ओळख एटले ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन.

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: आईएएस अधिकारी ने सिर्फ पेंट की मदद से घरों का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया। चेन्नई में बढ़ती गर्मी ने गरीब और छोटे घरों की जिंदगी मुश्किल कर दी। छतें दिन भर धूप सोख लेती और रात तक कमरे तंदूर जैसे गर्म हो जाते। एसी तो दूर, कूलर चलाने का बिजली का बिल भी कई परिवारों की बस की बात नहीं था। तब आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने सोचा, समस्या ऊपर है तो समाधान भी ऊपर ही होगा, छत पर। तमिलनाडु के अर्बन हीट मिटिगेशन प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने शुरू किया कूल रूफ इनिशिएटिव। योजना बेहद सरल थी। छतों पर लगाया गया एक खास सफेद रिफ्लेक्टिव पेंट जो धूप को सोखने के बजाय वापस लौटा देता है। लेकिन हजारों घरों की छतें पेंट करवाना आसान नहीं था। लोगों ने कहा, छतें तो सालों से ही ऐसी हैं, अब क्यों पेंट करें। फिर भी सुप्रिया ने हार नहीं मानी। लोकल मजदूरों को ट्रेनिंग दी गई। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इस मुहिम से जुड़ गया और जब गर्मी आई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। कई घरों के अंदर तापमान 5 से 8 डिग्री तक कम हो गया। जो कमरे पहले दम घोट देते थे अब रहने लायक हो गए। दोपहर की गर्मी में बुजुर्ग भी आराम से सोने लगे। इसी पहल के लिए आए सुप्रिया साहू को 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की ओर से दिया गया। आए सुप्रिया साहू की ये पहल सिखाती है कि कभी कभी जलवायु संकट का समाधान बहुत बड़ा नहीं होता। कभी कभी बस पेंट की एक परत पूरे शहर की गर्मी कम कर सकती है। सोचिए, अगर हर शहर ऐसा करे तो कितना फर्क पड़ेगा।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: I'm so
1: अल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं बेटा उनको भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना छोटा तो देखो कितना छोटा है

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: जब बाकी राज्य युद्ध में उलझे थे तब भारत की एक रानी सड़कें, मंदिर और रोजगार बना रही थी।
2: भेड़ बकरी चराने वाली एक साधारण सी लड़की से भारत की सबसे महान रानी बनने तक ये कहानी है अहिल्या बाई होलकर की, जिन्होंने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि भारत का इतिहास बदल दिया। इमेजिन कीजिए 1700 का भारत, जहां औरतों को पढ़ाना भी गलत माना जाता था। उसी दौर में महाराष्ट्र में जन्मी अहिल्या बाई के किसान पिता मनकोजी राव शिंदे ने अहिल्या को पढ़ना और लिखना सिखाया, समाज की परवाह किए बिना जीना सिखाया और यही थी इतिहास की नींव। एक दिन मराठा साम्राज्य के सरदार मल्हारराव होलकर ने गांव से गुजरते हुए अहिल्या को देखा। सिर्फ 8 साल की उम्र और आंखों में आत्मविश्वास की चमक, उसी पल उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। राजमहल आकर अहिल्या बाई ने प्रशासन सीखना शुरू किया, राज्य कैसे चलता है, जनता की समस्याएं कैसे सुनी जाती है। तभी एक युद्ध के दौरान उनके पति खांडे राव की मृत्यु हो गई। समाज ने कहा पति के बिना औरत का क्या जीवन, सती हो जाओ, लेकिन अहिल्या ने साहस के साथ मालवा की गद्दी संभाली। उन्होंने लोगों का भरोसा जीता और उनके लिए सड़कें, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाई। भारत भर में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर जैसे 12,000 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। महेश्वरी साड़ी की शुरुआत की, जो आज भी भारतीय हथकरघा की शान है। उनके राज्य में बिना टैक्स बढ़ाए राज्य की कमाई 75 लाख से बढ़कर 125 करोड़ तक पहुँच गयी थी।
1: विकास की नई परिभाषा लिखने वाली अहिल्या बाई होलकर की कहानी।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: 104.4 FM सिविक सेंस की बात करते हैं। यहाँ पे 10th के बच्चे थे जो जा रहे हैं मनाली के टूर में घूमने के लिए।
1: जीरो सिविक सेंस। अब ये देखिए, मिजोरम के ये यात्री अपना कचरा खुद बैग में भरते हुए, पूरा डिब्बा साफ, फर्श पर एक भी टुकड़ा नहीं, एक ही ट्रेन, एक ही देश, पर सोच पूरी अलग। तो आखिर इस फर्क का राज क्या है? एक शब्द, तोलम गायना, मतलब खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना। इसी सोच की वजह से आइजोल को साइलेंट सिटी कहा जाता है, जहाँ हॉर्न कम बजते हैं, लाल बत्ती कोई नहीं तोड़ता, लोग लेन में चलते हैं, जब कोई सड़क पार करता है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, सड़कें साफ हैं, लोग अपना कचरा खुद उठाते हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। यह सभ्यता कोई बड़ी बात नहीं, ये आदत है। और इधर नया चार्जिंग पोर्ट लगते ही कुछ ही घंटों में कूड़ेदान बन जाता है। मिजोरम में भरोसा इतना है कि कई दुकानों में दुकानदार तक नहीं होते, जो चाहिए उठाओ और ईमानदारी से पैसे रख दो, क्योंकि उन्हें बचपन से बेहतर बनना सिखाया जाता है। बियाते हर शनिवार सुबह स्कूल के बच्चे हाथ में झाड़ू लेकर अपनी अपनी गलियों की सफाई करते हैं, क्योंकि यहाँ कचरा किसी और का काम नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ हम में से ज्यादातर लोग मैं पहले में जीते हैं, वहाँ मिजोरम चुपचाप मैं बाद में को जीता है। रात 3 बजे लैंडस्लाइड हटाना हो या किसी पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देना, यहाँ कोई पीछे नहीं छूट। छोटा सा राज्य पर बहुत बड़ा सबक, क्योंकि सिविक सेंस सड़कें नहीं बनाती, चरित्र बनाता है। देश बदलना है तो आदतें बदलनी होंगी। सवाल ये नहीं कि मिजोरम ऐसा क्यों है, सवाल ये है क्या हम भी ऐसे बनना चाहते हैं?
2: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: दादी, पोता और 70 साल पुराना एक मिट्टी का घर, नानीचो वाड़ो, कोंकण के एक छोटे से गांव की ये कहानी है अपने जड़ों से दोबारा जुड़ने की। सिंधुदुर्ग जिले के पांगरड़ गांव के स्मितेश छठी क्लास के बाद ही अपने गांव से दूर मुंबई चले गए। वही पले बड़े और नौकरी भी की, लेकिन सालों के बाद भी सोशल मीडिया पर कोंकण के खूबसूरत वीडियो देखकर उन्हें अपने गांव की याद आती, जिसे वह कहीं पीछे छोड़ आए थे। बस फिर क्या था, उसी याद को ताज़ा करने वह कुछ दिनों के लिए गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके 70 साल पुराने मिट्टी के घर की देखभाल उनकी दादी सुनंदा तांबे अकेली ही कर रही है। आज भी वो घर की जमीन लेपती है, सारे त्योहार मनाती है और सादगी से जीती है। यह सब देख स्मितेश ने ठान लिया कि उन्हें भी इसी तरह से जीवन जीना है और शहरी लोगों को कोंकणी संस्कृति से रूबरू करवाना है। इसके लिए स्मितेश ने सबसे पहले अपना कैमरा बेचकर इस घर की मरम्मत करवाई, मिट्टी की दीवारों पर नए छप्पर डालकर उस घर को फिर से जिंदा कर दिया और खोल दिए इसके दरवाजे मेहमानों के लिए, जहां लोग गांव का पारंपरिक जीवन, दादी के हाथों का स्वादिष्ट कोंकणी खाना, त्योहार की रौनक, देसी पेड़ पौधे और पक्षी देखने आने लगे। यहाँ उन्हें ट्रेकिंग और योगा का अनुभव भी मिलता है। यहाँ आने वाले मेहमान यही के जीवन में और दादी पोते की इस सुंदर कहानी में घुल मिल जाते हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी उनकी कहानी तो इस बार छुट्टियों में नानी तो वाड़ो जरूर जाइए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करिए।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 1200 सूखे बोरवेल्स को एक अधिकारी ने बना दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। मिलिए IAS प्रताप एम से। तमिलनाडु के विरुधनगर के एक किसान परिवार में जन्मे प्रताप बचपन से ही पानी की हर एक बूंद की कीमत समझते थे। सालों बाद जब वे तिरुवल्लूर के जिला कलेक्टर बने तब उन्होंने देखा कि जिले में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कई कुएं सूख चुके थे लेकिन दूसरी ओर हर मानसून में सड़कों पर बारिश का पानी भर जाता, लाखों लीटर पानी नालियों में बहकर बेकार चला जाता। तभी उनकी नज़र जिले में मौजूद हजारों बंद और बेकार पड़े बोरवेल्स पर गई। उन्होंने सोचा क्यों ना सूखे बोरवेल्स को फिर से पानी बचाने के काम में लाया जाए। न कोई महंगी तकनीक, न कोई बड़ा बांध, बस एक सरल और समझदारी भरा विचार। उनकी पहल से 1200 से अधिक सूखे बोरवेल्स

0: रेन रिचार्ज स्ट्रक्चर में बदल दिया गया ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन के भीतर जाकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके। और पहले ही मॉनसून के बाद इस पहल से शानदार नतीजे मिले। कई इलाके में भूजल स्तर 5 से 10 फीट तक बढ़ गया। सूखे कुओं में फिर से पानी आने लगा। हैंडपंप दोबारा से चलने लगे। किसानों को अपनी फसल के लिए पानी मिलने लगा और जो गांव कभी पानी के टैंकरों पर निर्भर थे वहां के कुओं में फिर से पानी लौटने लगा। जिन बोरवेल्स को लोग बेकार समझ चुके थे अब वही पूरे इलाके की जीवन रेखा बन गए। IAS प्रताप की यह पहल याद दिलाती है कि हर समाधान नया होना जरूरी नहीं, कई बार जवाब उन्हीं चीजों में छुपा होता है जिन्हें हम बेकार समझकर छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत के दूसरे शहरों में भी ये मॉडल अपनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मेघालय का ये वर्ल्ड फेमस रूट ब्रिज बस एक 10 साल के बच्चे की सोच का नतीजा है। हेली वॉर जब 10 साल के थे तब उन्होंने देखा कि तेज बारिश के दिनों में उनका पूरा गांव नदी से कट जाता था। समस्या बड़ी थी लेकिन समाधान उन्हें मिला दादी नानी की उन कहानियों में जहां पेड़ों की जड़ों से पुल बनते थे। बस यहीं से शुरू हुआ एक सफर जिसमें ना तो मशीनें थी ना इंजीनियरिंग की डिग्री। हेली ने रबर ट्री की जड़ों को बांस और लकड़ी के सहारे मोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें जोड़ते गए। ये एक दो दिन का काम नहीं था, 20-30 साल की मेहनत लगी। जैसे जैसे हेली बड़े होते गए वैसे वैसे पुल भी बड़ा और मजबूत होता गया। आज हेली 69 साल के हैं और उनका बनाया लिविंग रूट ब्रिज हर साल 10,000 से ज्यादा लोग देखने आते हैं। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं है, मेघालय की खासी और वार जनजातियों की जिंदा विरासत है। साल 2022 में यूनेस्को ने इसे टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया और अब 23 साल के मॉर्निंग स्टार होंग थॉ इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो गांव जाकर लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे जड़ों से सिर्फ पुल ही नहीं झूले बैठने की जगह और टनल भी बनाई जा सकती है। हेली वॉर और मॉर्निंग स्टार का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन एक गहरा रिश्ता है जड़ों से मिट्टी से और इस जिंदा विरासत से। एक ने इसे बनाया दूसरा इसे संवार रहा है और इस तरह एक 10 साल के बच्चे की सोच आज दुनिया को सिखा रही है कि अगर जड़ें मजबूत हों तो उनसे सपनों के पुल भी बन सकते हैं।
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: पिछले 6 सालों से इस कॉलोनी से कोई भी कचरा बाहर नहीं गया। यह है साउथ दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी, जहां 280 घरों से रोज 300 किलो कचरा निकलता है, लेकिन उसमें से कुछ भी लैंडफिल में नहीं जाता। यह बदलाव शुरू हुआ 8 साल पहले, जब डॉक्टर रूबी मखीजा RWA की सेक्रेटरी बनी। एक डॉक्टर होने के नाते वो जानती थी कि साफ सफाई का हमारे स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर होता है, इसीलिए उन्होंने सामूहिक स्तर पर बदलाव लाने पर जोर दिया। सबसे पहला कदम, हर घर को समझाना कि वे अपना कचरा खुद छांटे, यानी गीला, सूखा और हजार्डस वेस्ट। दूसरा, सफाई कर्मियों को अलग अलग कचरा इकट्ठा करने के लिए मनाना। इस पहल से आज हर दिन 125 किलो गीले कचरे की खाद बनती है, जिससे कॉलोनी के बगीचे हरे भरे हो रहे हैं। वहीं सूखा कचरा रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था, लोगों को बदबू का डर था। हेल्पर्स ने कहा यह हमारा काम नहीं। तब रूबी और उनकी टीम घर घर गई। उन्होंने डस्टबिन के बारे में लोगों को समझाया, इस पहल के फायदों की जानकारी दी, रोजाना अपडेट, वीडियो और सर्कुलर भेजना शुरू किया, ताकि सभी लोग जुड़े रहें। धीरे धीरे यह बदलाव पूरी कॉलोनी की आदत बन गया। उन्होंने एक RRR सेंटर भी शुरू किया है, जहां लोग अपने पुराने कपड़े, फर्नीचर, यहां तक कि गैस सिलेंडर तक डोनेट करते हैं। इस पहल से अब तक 30 टन से ज्यादा सामान NGO के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा चुका है। इतना ही नहीं, कॉलोनी को सस्टेनेबल बनाने के लिए बारिश का पानी भी जमा किया जाता है। टैप पर पानी बचाने वाले एरिएटर लगे हैं। साथ ही यहाँ एक कम्युनिटी फ्रिज भी है, जहाँ लोग अपना बचा हुआ खाना जरूरतमंदों के लिए रखते हैं। इस कॉलोनी से अब तक 3000 किलो ई वेस्ट जमा हो चुका है, 17 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया गया है और एक भी कचरे का बैग लैंडफिल में नहीं गया। क्या आपके मोहल्ले में उठाया जा रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसा ही कोई कदम?
1: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: गांव में जब कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है तो लोग गर्व से कहते हैं हमारे गांव का लड़का है, लेकिन अगर कोई कैमरा लेकर घूमे तो सवाल पूछते हैं ये क्या कर रहा है। राजस्थान के असाड़ा के यश चौधरी को भी यही सुनने को मिला। एक छोटे से गांव से निकलकर कैमरे की दुनिया बसाने वाले यश के लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को बचाने की जिद थी। जहां लोग बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए भागते हैं, उन्होंने चुना अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का रास्ता। गांव की गलियों, पुराने घरों, बुजुर्गों की कहानियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर दुनिया तक पहुंचाया। पर गांव में लोगों को समझाना मुश्किल था। कभी लोग हंसे, कभी बोले इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन यश के सपनों पर उनके घर वालों को भरोसा था। पहला DSLR कैमरा भी पिता ने ही दिलाया था। आज उनकी तस्वीरें सिर्फ गांव तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया को भारतीय संस्कृति की असली झलक दिखा रही है। अब उनकी पत्नी संतू चौधरी भी इस सफर में उनके साथ है। जिस समाज में अब भी पर्दा प्रथा है, वहाँ उन्होंने एक नया रास्ता चुना, संस्कृति की सुंदरता को पूरे सम्मान के साथ दुनिया तक पहुंचाने का। जब लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ये कलाकार अपने गांव की कहानियों को कैमरे में कैद कर रहे हैं ताकि हमारी परंपरा बस यादें ना बने बल्कि हमेशा जिंदा रहे। उनकी हर तस्वीर यही कहती है, अपनी जड़ों को मत भूलो क्योंकि वही असली पहचान है। यश की तरह हम सबके पास भी एक रास्ता होता है कि या तो दुनिया की दौड़ में सपने भूल जाएं या फिर अपना रास्ता खुद बनाएं। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे?
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।
1: 28 साल की मेहनत, एक रिटायर्ड दंपति और पक्षियों के लिए बना 6000 पेड़ों का जंगल, ये कहानी है गुजरात के दिनेश चंद्र ठाकर और उनकी पत्नी देवेंद्र बेन ठाकर की, जिन्होंने बंजर जमीन को सींचा, सालों झोपड़ी में रहे और एक पौधे से शुरुआत कर 3 एकड़ जमीन को बना दिया हरा भरा निसर्ग निकेतन। आज यहाँ 200 किस्मों के 6000 पेड़ खड़े हैं। उनकी इस निस्वार्थ सेवा के पीछे है 1984 की भीषण गर्मी और एक करुण कहानी।
2: उसी वक्त हमने कोयल, बुलबुल ऐसे छोटे मोटे पक्षी को मरते हुए देखा। पेड़ पर से गर्म तापमान के कारण नीचे गिर जाते थे। उनका दुख हम दर्द हम देख नहीं सके, तो हम दोनों ने, मेरे पति और हम दोनों ने निश्चय किया कि हम ऐसा निसर्ग बनाए कि जहाँ पक्षी को दाना, पानी और रहने का आश्रय मिले।
1: दोनों तब स्कूल में पढ़ाते थे और रिटायरमेंट से पहले ही प्रकृति की सेवा का फैसला कर लिया। फिर 1999 में गुजरात के धनोरा गांव में 3 एकड़ बंजर जमीन खरीदी, लेकिन यहां हरियाली फैलाने का काम आसान नहीं था, न बिजली न सुविधाएं। कई सालों तक वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहे, खुद एक एक पौधा लगाते और पानी देते रहे। भीषण गर्मी में कभी पौधे सूख जाते तो कभी जानवर उन्हें खा जाते, लेकिन वे रुके नहीं, सालों तक उसी जज्बे के साथ अपने मिशन में जुटे रहे। धीरे धीरे बैर, इमली, कचनार जैसे देसी पेड़ बढ़ने लगे और उसके साथ ही लौटने लगे पक्षी। आज निसर्ग निकेतन मोर, तोता, बुलबुल सहित सैकड़ों पक्षियों का घर बन चुका है, जिनके लिए दिनेश भाई और देवेंद्रा बेन आज भी हर दिन 100 किलो अनाज और पानी की व्यवस्था करते हैं। इन पक्षियों के लिए ही उन्होंने निसर्ग सेवा ट्रस्ट भी बनाया है, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब वे गांव में 10 और ऐसे जंगल विकसित कर रहे हैं। जिस जमीन को कभी गुजरात का मिनी रण कहा जाता था, आज लोग वहां हरियाली और पक्षी देखने आते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक मजबूत इरादे वाले दंपति की बदौलत, जो आज 75 और 78 की उम्र में भी आराम करने की जगह प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। आइए उनकी सेवा और समर्पण का सम्मान करें।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો, સ્વસ્થ રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર 90.4 FM.
1: 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब के साथ जयपुर के ये युवा कर रहे हैं शहर की ऐतिहासिक जगहों को साफ।
2: अभी तक करते हुए टीम ने 6000 किलो प्लस केजी का कचरा उठाया है, जिसमें से 3000 केजी प्लस सिंगल यूज प्लास्टिक है। यह कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि हमारी हेरिटेज साइट्स और पब्लिक स्पेसेस को एक सांस दिलाने की एक पहल है।
1: छुट्टी के दिन जब सभी आराम कर रहे होते हैं, तब कर्तव्य टीम के सदस्य निकल पड़ते हैं सफाई करने, ताकि कचरे का ढेर बन चुकी शहर की एक धरोहर फिर से जिंदा हो सके। एक साल पहले जब तीन दोस्त संदीप, मोहनीश और पुष्पेंद्र ट्रैकिंग और साइकिलिंग के लिए आसपास के पहाड़ों पर जाते थे, तब उन्हें हर बार खूबसूरती से ज्यादा कचरा दिखाई देता था। नजरअंदाज करने के बजाय उन्होंने वो कचरा उठाना शुरू किया। धीरे धीरे ये छोटी सी कोशिश उनका मिशन बन गई। कुछ दोस्तों ने उनका साथ दिया तो कुछ ने कहा, ये सरकार का काम है, तुम नौकरी के साथ ये सब कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय लोगों को जागरूक करने का काम किया।
3: गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्लीनिंग कर चुकी है, उसके बाद है ये कचरा, और अभी कचरा और भी है।
1: ऑफिस के लोगों को जोड़ा, व्हाट्सएप ग्रुप और कर्तव्य टीम बनाकर हर वीकेंड युवाओं को बुलाना शुरू किया, कभी पेंटिंग वर्कशॉप तो कभी हेरिटेज वॉक का बहाना बनाकर। अपने शहर को साफ करने के लिए एक नहीं सैकड़ों युवा एकजुट हो गए।
4: इन जनों का इनिशिएटिव, आज 250 लोगों का टीम, ये इनिशिएटिव बन चुका है एक यूथ लेड इनिशिएटिव, जिसमें जेन ज़ी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं।
1: जमा किया हुआ वेस्ट वो खुद अलग करते हैं, फिर उन्हें रिसाइकलिंग के लिए नगर पालिका को सौंप देते हैं। आज जयपुर शहर का जल महल, पत्रिका गेट और सेंट्रल पार्क, नाहरगढ़ कुंड, छूटन की बावड़ी, हाथनी कुंड, झालना लेपर रिजर्व जैसे पब्लिक प्लेसेस हमेशा साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि कुछ युवा हैं जो कंप्लेन नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
0: मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

0: राहुल तो यहाँ नहीं है।
1: अरे बॉडी में राहुल यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो प्लीज।
0: ओह गॉड, मैं अभी आया। श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
2: नहीं मिला।

पक्का पालनपुरी न्यू ओल के लिए ट्यून रहे मस्त रहे समर्थ रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

युवक विष्णु प्रभाव के गर्व गौरव ये छोड़ी दो तेवू कहे छे। नागराज अने साधन छो तो साधन रहो तमे। त्यारे नागराज जवाब आपे छे, उद्दंड थता जुओ छो विप्रवर्म तमने, मारा झेरनी तीव्रतानो अणसार नथी लागतो। एक बिंदु पण जीवने पृथ्वी लोक छोड़वा विवश करी दे त्यां तमे शू करशो। तमे सांभळी रह्या छो रेडियो पालनपुर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आरजे एआर ना स्वरमां सौम्य तेजस्वीनी पुस्तकना अंशोने। युवक जवाब आपे छे, नागराज हूँ पण धन्वंतरीनो शिष्य छु। धन्वंतरीए चींधेल औषधना प्रभावनो अणसार तमने पण नथी, गमे तेवा झेरनुं मारण अहींना औषधमां छे। अलम दर्पेण, नागराज हवे गुस्सामां आवी गया हता। पोताना प्रभावनी शक्तिने अवगणतो आ युवक तेमने उद्दंड लागतो हतो। तेमणे विचार्युं, आ युवकने मारा विष प्रभावना दर्शन करावा ज पड़शे। हे मूर्ख, शुं समझे छे? तक्षकने ए बोल्यो तो पछी विप्रवर्य मारे तमने मारा विष्णु प्रभाव तो बतावो ज पड़शे। मारा औषध प्रयोगनो आ प्रयोग पण तमे जोई लो। आ जुओ, विशाळ वटवृक्ष ऊभू छे एम तक्षक कहे छे। चैतन्य सभर एना मूळमां हूँ मात्र एक दंश दईने अने वृक्ष ने मारण करीने मरणना शरण करी दईश। युवक कहे, जोईए त्यारे, ए पण जोई लईए। तक्षके घनघोर वटवृक्षना मूळ आगळ एक दंश दीधो अने तरत ज वृक्षना पांदड़ा पीड़ा पड़ी गया, शाखाओ ढीली पड़ी गई, वटवृक्ष निमेष मात्रामां मृत्यु गामी थयुं। नागराज बोल्या, जोयुं? विष आ तो प्रकृतिनुं प्रिय संतान, अमर्याद एनो जीवन काळ। मारा विषनो प्रभाव जोयो के केटली क्षणमां एना आत्मा यमसदने पहोंच्या। नागराजना कथनमां भारो भार अहंकारनो रणको हतो, पण सौम्य युवक जवाब आपे छे, थोबो नागराज, मृत्युनो निश्चय करवामां उतावळ न करो। तमारो विष अमोघ छे, पण वटवृक्षना मृत्युना हजु समय आव्यो होय तेवा कोई अणसार नथी। तमे अनुज्ञा आपो तो आ औषधनो प्रयोग करूं। शुं युवक प्रयोग करशे, सफल थशे? માણીશું વિરામ બાદ। ત્યાં સુધી મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો ને સાંભળતા રહો રેડિયો પાલનપુર।

मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो अने सांभळता रहो। रेडियो पालनपुर 90.4 FM।

अक्का पालनपुरी ने ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।